यहाँ सब नेशनल मॉन्यूमेंट की एक ग्रैंड स्टेयरकेस वाली ये तो एस्केलेंटे नेशनल मॉन्यूमेंट वाली है ए आज शेन होता है आज इधर हर आंगो को ए यहाँ कंग्रेशनल स्टाफ ए ये लेही खातो है शेन बता देते ना लेने के ए ये